0: भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आम्ही आकाशवाणीच्या यवतमाळ केंद्रावरून बोलत आहोत। यावेळी सकाळचे 6:05 झालीत।

0: देखिए साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, प्रतिदिन शाम 6:30 बजे
1: सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
2: कोण गुणगुणत तुमच्या कानाशी, कोण हितगुज करत तुमच्या मनाशी। आकाशवाणी यवतमाळ।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: हिरवी धरणी हिरवे तरु, हिरवी हिरवी वाट सांगते, प्लास्टिकचा नकोच वापर, सारी सृष्टी हेच मागते।

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद

0: के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
1: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं।
3: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत

0: विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 011-23-31-04।

चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए गब्बर इज बैक फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में। मनोज यादव ने इसे लिखा है, चित्रंतन भट्ट का संगीत।

आज विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है। ये दिन एचआईवी एड्स जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन खोजने वाले वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के प्रयासों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और ये समझना है कि सही जानकारी, सावधानी और समय पर जांच से इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। सुरक्षित जीवन शैली अपनाना, जागरूक रहना और भेदभाव से दूर रहना बेहद जरूरी है। आइए हम सभी मिलकर एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाएं और एक स्वस्थ, संवेदनशील समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म हमारी अधूरी कहानी से। श्रेया घोषाल की आवाज, रश्मि विराग के बोल और जीत गांगुली का संगीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। संग्रहालय हमारी संस्कृति, इतिहास, कला और विरासत को संजो कर रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ हमें प्राचीन वस्तुएं, ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्लभ कलाकृतियां और सभ्यता, इन सब की अनमोल झलक देखने को मिलती है। संग्रहालय केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। आइए इस अवसर पर अपने इतिहास और संस्कृति को समझने, सहेजने और उससे जुड़ने का संकल्प लें। और लीजिए, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत, मीका सिंह और नक्श अजीज की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल हैं, ए आर रहमान की धुन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक पहेली लीला इस फिल्म का गीत सुनिए, मीत ब्रोज अनजान और अरिजीत सिंह की आवाजों में, कुमार के बोल, मीत ब्रोज अनजान का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है,
1: है।
2: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने

1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

0: चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।
1: अरे या या।

1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी, जिंदगी जिंदगी, रिवाज, बुनियाद, हीरा, बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म में पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया, फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, ढाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का सादर नमस्कार। और आज का सुरीला सफर है बन रहा कुछ अलग ही ढंग से, क्योंकि आपके संदेशों में बात है आज की और गुजरे हुए कल की। तो अब आपको बता देते हैं आज का टेक्स्ट। जैसे हमारे कुछ श्रोता जो कि फेसबुक पेज पर, जहां पर गीत भी मिलते हैं और मीत भी मिलते हैं, वहां पर उन्होंने ये टेक्स्ट देख ली होगी। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए हम बता देते हैं आज की ये इबारत। कई बार कुछ ऐसा होता है कि गुजरा हुआ वक्त चुपके से दबे पांव मन में चला आता है और किसी जादूगर की तरह साकार कर देता है वो बीता हुआ पल। जब कोई मिला या कोई बिछड़ गया, कुछ टूट गया, कुछ छोड़ दिया या कुछ पा लिया, वो पल जहां मन के बावरे पंछी संग रोके नहीं रोकी उमंग, या जहां किनारे पर डूब गई दिल की कश्ती, यादों की उन गलियों में भटकता ही रहे मन, लेकिन सितारे मेहरबान हो तो पुकार लेता है वर्तमान, ओ मितवा आ जा रे। इस गली में कहीं खो सकता है आपका आज, जल्दी से आगे बढ़कर थाम लीजिए अपने आज का हाथ, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं। तो चलिए उसी राह पर जिस पर खड़ा है आज अभी यहीं। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर आपने चुन लिए हैं गीत। भाई गीत, गीतों की इस लिस्ट में बहुत लंबी सी लिस्ट है, और हमारे कुछ साथियों ने बताया है बहुत सारे गीतों के बारे में। एक श्रोता ने बताया है, कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना चुपके से दिल दे दे, चला जाता हूं किसी की धुन में, जादूगर सैया, इस तरह के उन्होंने करीब 15 गीत छांटे हैं। वाह क्या बात है, गीतों के मामले में कितने संपन्न हैं हमारे श्रोताओं की याददाश्त। वाकई इस बात का हमें कई बार ये भी लगता है कि कितने ज़्यादा गीतों से जुड़े हुए लगाव है आप सभी को। एक श्रोता का जो संदेश है वो कह रहा है कि उसमें कुछ यूं कहा गया है कि आज की भारत ने मन के पक्षी को अतीत में ले गया।

ही कहा गया है, आप भूगोल बदल सकते हैं, इतिहास नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर दस्तक देता है। यह अतीत सुनहरा या कड़वा हो सकता है, मगर वे लम्हे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। बेहतर है बीते अतीत के बुनियाद पर जीवन को बुलंद कर वर्तमान में जीना ही सार्थकता है, क्योंकि वर्तमान ही हकीकत है। समय की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई में छिपे यादों के मोती अक्सर हमारे दिल के आंगन में बिखर जाते हैं। कभी कभी हवा का एक झोंका, किसी पुराने पन्ने की खुशबू या रास्ते में मिला कोई जाना पहचाना चेहरा हमें गुजरे जमाने की गलियों में वापस ले जाता है। वो लम्हे जो पीछे छूट गए थे अचानक सामने आकर दिल को एक अनूठे सुकून और भीगी हुई उदासी से भर देते हैं। वाह, क्या खूबसूरत बात कही है। तो बताइए कि आज कई बार वो याद जो ताज़ा हो जाती है किसी ऐसे ही पुराने पन्ने की खुशबू के साथ, या हवा के किसी झोंके के साथ, या किसी जाने पहचाने चेहरे के साथ, कभी बहुत साल पहले गुजरी थी जो बात, वो बात ताज़ा हो जाती है। तो उस बात के बारे में हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पुरानी यादों या बीते हुए वक्त की खुशनुमा या कठिन परिस्थितियों के पल जब भी स्मृति पटल पर पूर्व दीप्ति बनाने लगते हैं तो मन में एक भावुक संवेदना जागती है। ऐसे में मन का पंछी पुरानी यादों को एक नई उमंग और उम्मीद के साथ फिर से उड़ान भरने लगता है, और एक सकारात्मक सोच मन में आती है कि फिर एक बार कोई प्यार से पुकार ले। अपनी सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमय इबारत की इबादत की इबारत से निकले शब्दों में कई बार कुछ ऐसा गुजरा वक्त, चुपके से दबे पांव, मन आपका आज चला आता, किसी जादूगर साकार, बीता पल मिला, जल्दी गली मितवा, आगे बढ़ थाम लीजिए, जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गुजरा हुआ जमाना, बीता हुआ वक्त और पुरानी यादें किसी जादूगर की तरह चुपके चुपके हमारे वर्तमान में लौट आती हैं। समय और यादों का ये सफर इतना गहरा होता है कि कई बार कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ पुरानी बातें और कुछ मधुर स्मृतियों के गीत अचानक दिल में उतर जाते हैं। भले ही आप दूर हो, पर वो पल तो अचानक ही सजीव होकर आपके साथ हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने, और उन्हीं स्मृतियों के बारे में हम पूछ रहे हैं, उन्हीं खट्टी मीठी यादों के बारे में हम आप पूछ रहे हैं हम आज, जो आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले या आज से 10 साल पहले गुजरी हो और आपको आज भी याद करा देती हूँ। ये गाना सुनिए और बताइए कि ये किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

हमारे एक श्रोता ने खुशी जाहिर की है कि वाह, मेरी लिस्ट का पहला ही गाना मिल गया। बिल्कुल सही बात। जवाब भी आए हैं बहुत ढेर सारे, ज्यादातर दिनेश ठाकुर या अमोल पालेकर जी की बात हुई है। एक श्रोता ने राजेश खन्ना का भी नाम लिखा है, ये रजनीगंधा फिल्म का गाना है। योगेश के बोल सलिल चौधरी का संगीत, और गाना बैकग्राउंड में चलता है। दरअसल शुरू ये विद्या सिन्हा के चेहरे से होता है और बाद में फिर दिनेश ठाकुर और अमोल पालेकर भी इस गाने में नजर आते हैं। तो भाई ये जो गाना है कि कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है तो मन तोड़ता है जब वो सीमा रेखा, और कूद जाता है जाके जल्दी से अतीत की गलियों में। ऐसा जब कुछ आपके साथ हुआ हो उस वक्त के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। बताइए हमें, आज से 10, 15 या 20 साल पहले ऐसी कौन सी बात हुई थी जो आज भी याद करके या तो आप हंस पड़ते हैं या फिर दूसरों को हंसी आ जाती है। संदेश है एक श्रोता का, कहते हैं कि समय किसी के रोके नहीं रुकता, वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, उसको पकड़कर चलने में ही समझदारी है। वक्त के साथ ही लोग मिलते और बिछड़ते हैं, हमारा बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए हमें भविष्य की चिंता छोड़ आज में जीना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक और श्रोता कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमें यह एहसास जरूर दिलाती हैं कि हमने जीवन में कितना कुछ जिया है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी बातें, कुछ बिछड़े रिश्ते, यही सब मिलकर मन एक ऐसी व्यथा पैदा करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। यादें हमारे भीतर चुपचाप सांस लेती रहती हैं, कभी रात की खामोशी में, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी अकेलेपन की किसी लंबी शाम में वे फिर दस्तक देती हैं। बहुत सुंदर। एक और श्रोता ने आज शीर्षक से कुछ बात कही है। आज कोई ठहरा हुआ समय नहीं, बल्कि ये वो द्वार है जहां मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि जीवन केवल आज में ही धड़कता है। जो व्यक्ति आज में जीता है वो किसी भी कार्य को पूर्ण समग्रता से कर सकने की क्षमता रखता है, यही पूर्णता ही ध्यान यानी मेडिटेशन है। वाह क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि अतीत के सबसे मोहक पलों में से एक होता है बीता हुआ समय। समय अपने अंदर कितना कुछ समोए रहता है, किसी अपने का मिलना बिछड़ना, यादों के तिलिस्म के ना जाने कितने दरवाजे हैं, मगर जीवन तब जीवन की तरह खिल उठता है जब कोई अपना हमें पुकार लेता है। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी सौगात लेकर आते हैं, ऐसे में उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, जो है वो बस आज में है, इसी पल में है। बहुत सुंदर बात कही है। और एक और श्रोता ने बताया है कि सुरीला सफर में कुछ गाने गुजरा हुआ जमाना, वक्त, पल, मितवा, कश्ती आर सच वर्ड्स ऑन विच टूडेज सुरीला सफर विल गो ऑन, द रेस्ट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपकी लिस्ट में इसने आपने जो शब्द चुने हैं, देखिए उन पर गाने आ रहे हैं या नहीं, और सोचिए तो कोई गाना आपके ख्याल में आ रहा है या नहीं। लेकिन अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे श्रोताओं ने। मधुबाला पर फिल्माया गया है शीरे फरहाद फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल थे और एस मोहिंदर का संगीत था। श्रोताओं ने अपनी कुछ यादें भेजी हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे उस समय की रिलीज हुई नई फिल्मों के गाने बहुत ज्यादा पसंद आते थे, पर जो जो समय बीतता गया मुझे ज्यादा पुराने गाने ज्यादा पसंद आने लगे। आज के समय में तो मुझे नए गाने बहुत कम पसंद आते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही है कि आजकल किसी छोटे बच्चे को शरारतें करते देखती हूँ तो अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता है। तब की उनकी शरारतें कभी गुस्सा दिला जाती थी, आज याद कर मन को गुदगुदा जाती हैं। वो वक्त कितना जल्दी गुजर गया जिसे फिर से जीने का मन करता है। काश वो गुजरा हुआ जमाना फिर से आ जाता। बिल्कुल सही बात है, वो पल बीत जाते हैं लेकिन हम उन्हें याद करते रहते हैं। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, फिर भी हम कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वाकई एक और श्रोता ने आज की इबारत को पढ़कर सुरीले सफर में गुजरे हुए पलों की बातों से संबंधित गीतों को तवज्जो दिया गया है। ऐसा लिखा है, हर इंसान के जीवन में गुजरे हुए पलों की यादें सुखद और दुखद दोनों हो सकती हैं। सबसे ज्यादा बचपन से जुड़ी हर लम्हा और उनकी यादें बहुत कचोटती हैं। काश कोई खोया हुआ बचपन फिर से लौटा दे, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार पुराने सुनहरे पल हमें अपने उससे जोड़ते हैं। पुराने पलों की उन बातें जो अच्छी हैं उनके लिए कृतज्ञता महसूस करें, लेकिन जो पल बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करने से शांति मिलती है। उन्होंने कुछ गानों के नाम भी दिए हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। अपनी यादों को हमारे साथ साझा करने के साथ साथ एक बात और, आज विश्व संग्रहालय दिवस है तो बताइए कि संग्रहालय में ज्यादातर गुजरे जमाने की इतिहास की उन अनमोल यादों को संजोया जाता है जो बहुत खास होती हैं। कभी आपने कोई संग्रहालय देखा है या बचपन में कभी गए हो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन हैं।

0: सही जवाब के साथ आपके संदेश आ गए। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म मन मंदिर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और भाई संदेशों की तो क्या ही कहें। नौजवानी के दिन जब बचपना विदा ले रहा था और जवानी दस्तक दे रही थी, उस समय ट्यूशन में पढ़ने वाली एक सहपाठिनी का मेरी गलतियों पर मुस्कुराना याद है। वो निश्चल हंसी, उफ क्या बात है। तो भाई देखिए ना, किसी की हंसी, किसी की बात या किसी का टोकना भी याद रह जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, जो बीत गया सो रीत गया, जो बच रहा वो यही पल है जिसका इस्तेमाल हम सब VBS के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, विविध भारती के साथ आपका ये पल कैसा गुजर रहा है इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारी श्रोताओं ने जो भेजे हैं हमें गानों के, बताइए कि ये पल, ये जो गाने हैं ये आपके लिस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं। एक श्रोता ने कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना, चुपके चुपके चल रही पुरवैया और जादूगर जैसे बहुत सारे गानों का अपना लिस्ट बना के भेजी है। एक श्रोता ने गुजरा हुआ जमाना वापस तो नहीं आ सकता ये कहते हुए अपना संदेश आगे लिखते हैं कि लेकिन हम कभी एकांत में बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं, तब उन बीते हुए लम्हों में खुद को महसूस करते पहुंच जाते हैं। मसूरी के कैंप्टी फॉल में नहाने, जहां यारों की टीम 44 साल पहले कैमरे लिए तस्वीरें खींच रहे थे। लौटते हरिद्वार में गंगा स्नान का वो दृश्य सामने आ जाता है, जब मना करने पर तेज धार में बहने लगे और 2-3 साथियों ने तत्परता दिखाते हमें गहरे पानी में जाने से बचा लिया। उससे भी 10 साल पहले वाल्मीकि नगर रिजॉर्ट में नेपाल और बिहार की सीमा में अभयारण्य में घूमने गए, जहां धुंधलाती शाम में एक जहरीले सांप से भेंट हुई और सभी साथियों के साथ कैसे बाल बाल बचे। ऐसे तमाम वो पल जो एक एडवेंचर थे भी याद आए। और परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा, फिर दिल्ली में 2 दिन ऐतिहासिक इमारतों में घूमना, वो लाल किले में लिए गई कई तस्वीरें अच्छे दिनों में पहुंचा देती हैं। बहुत सुंदर यादें हैं आपने सजोई। यादें संजोने के लिए हम कई बार तस्वीरें भी खींचते हैं। आप बताइए कि क्या कभी तस्वीरों का वो एल्बम आप पलटते हैं जो आपने आज से 20-25 साल पहले खींचा था। और हाँ, उस वक्त तो तस्वीरें भी दूसरी तरह से ली जाती थी। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए और बताइए कि वो आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम।
1: ए,
0: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
0: नहीं ते
1: नहीं ते

सिन्हा पर फिल्माया गया मर्यादा फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सही जवाब के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया कि मैसूर का किला देखा राजा का पुराना राजमहल है। विश्व संग्रहालय दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए एक श्रोता बता रहे हैं कि 1989 में मुंबई के संग्रहालय पुरानी वस्तुओं, यादगार चीजें, धरोहर, विरासत, ये म्यूजियम उन्होंने 2 बार देखा है। म्यूजियम में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है, या जब भी देखा किस चीज को के सामने आप बड़ी, किस जो शोकेस में लगी रहती हैं तमाम चीजें, उनमें से किस शोकेस के सामने आप काफी देर तक खड़े रहे, अगर याद हो तो जरूर बताएं। और हाँ, तस्वीरों के एल्बम की बात भी तो रह गई, कौन सा एल्बम आप अभी तक बहुत सहेज कर रखते हैं और जब तक उसे पलट लेते हैं मौका मिलते ही। श्रोताओं के संदेश कह रहे हैं कि मेमोरीज आर लाइक फोटोज, यू कैन लुक बैक बट यू कैन नेवर गो बैक। बहुत सुंदर बात कही आपने, मतलब यादें तस्वीर की तरह होती हैं, आप उसे पलट कर देख सकते हैं लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकते। आज के सुरीले सफर की बातें भी कुछ ऐसे बीते हुए लम्हों से जुड़ी लग रही हैं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, वापस आती हैं तो सिर्फ उससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें, किसी से कुछ मुलाकातें जिसे याद कर कभी हमारे मन का बावरा पंछी भी बार बार डोलने लगता है। बीते हुए पल की कसक याद करते हुए कभी उदासी भी छा जाती है, इसलिए भूतकाल को याद कर उसमें से कुछ बोध पाठ लेते हुए वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें हंसी खुशी जिंदगी बिता दो। वक्त का पहिया ना कभी रुकता है ना रुकेगा, इसलिए आप भी दोपहर ठीक 1 बजे VBS के सुरीला सफर में जुड़ जाइए। क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सफर सुरीला और हंसी खुशी से भरा रहे, यही कामना करते हुए स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। वाकई वर्तमान में जीना ही समझदारी है, और वर्तमान में जीते हुए ये गीत आपको किन की याद दिला रहा है हमें जल्दी से बताइए। और हाँ, संग्रहालय की बात और अपने एल्बम की बात भी जरूर बताइएगा।

इस गीत का जवाब हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल पहले पूछ लेते हैं। क्या कभी वो छूटा हुआ प्यार भी याद आता है आपको? उसके बारे में अगर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल था हमारा कि इस गाने को सुनकर आपको किन की याद आती है, तो हमारे साथियों ने बताया सरस्वती चंद्र नूतन, फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम इन्होंने बताया है। किसी किसी श्रोता ने मोनीश जी का नाम भी, यानी मोनीश बहल शायद इनका मतलब है, उनका नाम लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा जिला अहमदनगर स्थित कैवलरी टैंक संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र और सबसे बड़ा सैन्य संग्रहालय है। फरवरी 1994 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 50 दुर्लभ और ऐतिहासिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों का अद्भुत संग्रह है, जो भारतीय बख्तरबंद कोर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी साझा की आपने। तस्वीरों के बारे में हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितने भी पुराने फोटो हैं सभी को सहेज कर रखती हूँ। अपने भाई बहनों के साथ वाले फोटो और अपने बच्चों का बचपन का फोटो, परिवार का फोटो, सभी जब भी फुर्सत में रहती हूँ जरूर पलट कर देखती हूँ और कुछ उसमें से फोटो निकाल कर उनसे संबंधित लोगों को शेयर भी करती हूँ। वाह, ये तो पुरानी यादें ताजा करने का बड़ा ही सुंदर तरीका है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि तस्वीरें खींचने और खिंचवाने का जबरदस्त शौक है और उनका संग्रह करना भी। न सिर्फ एल्बम में बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, सबके मेमोरी में भी संभाल कर रखती हूँ और गाहे बगाहे उन्हें पलट कर देखने का भी शौक है। परिवार में सबके शादी ब्याह की तस्वीरें अपने पास रखना अच्छा लगता है वाकई। और जब देखते हैं ना वो तस्वीरें तो फिर याद आ जाती हैं वो सभी बातें और वो अच्छा हल्का फुल्का वक्त जो गुजरा था उस वक्त। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मेरे ताऊजी की लड़की जो मेरी बहन थी, सन 1971 में उसकी शादी में हमारे सारे परिवार का एक साथ खींचा गया ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा फोटो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस समय मेरी उम्र 1 साल की थी और मैं अपने पापा की गोद में नजर आ रहा हूँ। उस फोटो की हमने तस्वीर में बनाकर रखा है, मतलब शायद फ्रेम करा कर रखा है आपने। वाकई ये तस्वीरें तो अनमोल होती हैं। एक और श्रोता ने साझा की है एक तस्वीर की बात। मेरी बेटी की तस्वीर जिसका एल्बम बार बार देखता हूँ, कितनी मासूम मुस्कुराती, आज वो 36 साल की हो गई मगर मुझे बच्ची ही लगती है। सच, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। संदेशों की बात करें तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज की भारत यादों की एक ऐसे जादुई आईने जैसी है जिसमें हमारा बीता हुआ कल आज भी खुलकर सांस लेता हुआ महसूस होता है। सचमुच इंसान का मन भी एक अजीब मुसाफिर है जो वर्तमान की सड़क पर चलते हुए भी अक्सर अतीत की पगडंडियों पर मुड़ जाता है। कहाँ क्या छूटा और क्या मिला, इसी उलझन में भटकता रहता है। यादों के समंदर में डूबना तो आसान है पर जिंदगी किनारे पर ही जी जाती है। गुजरे वक्त की जंजीरें कितनी भी रेशमी क्यों ना हो, उन्हें तोड़कर आज के वर्तमान पल का हाथ थामना ही असल मायने में जीना है, क्योंकि जो ठहर गया वो कल था, आज तो चलते रहने का नाम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज इंसान के बीते समय वक्त पे चर्चा होने की संभावना है। कहावत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जिसका वर्तमान सही है भविष्य भी सही होगा। वक्त को पहचानो, अहमदाबाद की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, पता नहीं पल में क्या हो जाए। वाकई बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को हंसी खुशी से ही

अमरदीप फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत। याद किया है हमारे कुछ श्रोताओं ने, छोड़ दे सारी दुनिया सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की बात की है। नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत का फिल्मांकन जूनागढ़ गुजरात के गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर हुआ था। उन दिनों मैं और मेरा मित्र जो जूनागढ़ के नजदीक रहता था उसके साथ शूटिंग देखने वहां गया था, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले फिल्म यूनिट वहां से विदा हो गया था। हमारी बात रह गई हमारे मन में, कुछ कह ना सके उलझन में। क्या बात है। लेकिन कई बार ये प्रयास ही बहुत अपने आप में ऊर्जा भर देता है, उत्साह भर देता है। हमारे एक श्रोता ने ओडिशा कटक नगर के नंदन कानन प्राणी संग्रहालय के बारे में बताया है, और कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक संग्रहालय बनाया गया है साइंस, जो सभी ग्रह और सूर्य के ऊपर बहुत सारे तथ्य दिखाता है। प्लैनेटोरियम की बात कर रहे हैं आप। और एक श्रोता कह रहे हैं कि इस उम्र के इस मोड़ पर पहले प्यार को सार्वजनिक करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि मेरी पत्नी सुरीला सफर में भी साथ साथ सुनती है। क्या बात है। वाकई कई बार ऐसे जोखिम से तो बचना ही चाहिए। और बात हो रही है पुराने इश्क की, तो बड़ी सुंदर सी कविता साझा की है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखी है, कभी कभी पुराना इश्क बरसों बाद भी दिल के किसी कोने में धीमी आंच सा जलता रहता है। ना वो आवाज देता है, ना कोई शिकायत करता है, बस अचानक किसी बारिश, किसी गीत या किसी खामोश शाम में याद बनकर उतर आता है। बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाली कविता है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जल्दी पढ़ रही हूँ। बड़ा ही सुंदर शब्द है। वो इश्क भी अजीब था, न पूरा मिला न कभी पूरा तरह बिछड़ा, बस जिंदगी की किताब में एक मुड़ा हुआ पन्ना बनकर रह गया। आज भी जब तन्हाई में धीरे से दरवाजा खटखटाती है, उसकी हंसी उसकी बातें मन में चुपके से चली आती हैं। मगर अब ना कोई गिला है, ना किसी के लौट आने की आस, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं, याद बनकर ही खूबसूरत लगती हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। और ऐसी यादों की बात करते हुए अब इस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे साथियों ने। हवस फिल्म का ये गाना संगीत उषा खन्ना का। और एक श्रोता ने बताया है कि बैंगलोर में संगीत म्यूजियम देखा है, बेहतरीन है, रिकॉर्ड रूम भी था, वहां गाना रिकॉर्ड किया था। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही सुंदर स्मृति संजोली। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब देना चाह कर भी जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब देना खतरनाक हो जाता है। ओहो, ठीक है, चलिए, आपने छुपते छुपाते बात कही दी। संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि

एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी एक शाख पर दोबारा नहीं बैठता। जो लम्हा गुजर गया वो इतिहास बन जाता है। वक्त की उड़ान वाकई एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बांधा जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश रफ्तार है जो बिना किसी शोर के सब कुछ बदल देती है। बचपन की मासूमियत से जवानी के जोश और फिर बुढ़ापे के तजुर्बे तक ये सफर इसी उड़ान की बदौलत तय होता है। इन्होंने एक शेर मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज हवाएं, कौन वक्त की धूप हो या तेज हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहां, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी।

मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज हवाएं, कौन वक्त की धूप हो या तेज हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहां, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी रहती है। सुख आनंद गानों के साथ जुड़ता जरूर है, लेकिन गानों से अलग भिन्न रहता है, इसलिए चैतन्य को हर गाने में आनंद मिलता है। पल पल हर पल विविध भारती के कार्यक्रम से सुखी रहता है और फिर सुख मरता नहीं है। क्या बात कही है, सुखी आनंद चैतन्य का स्वभाव है, इसलिए 24/7 पल हर पल व्यक्त रहती है। परंतु हम मानव को संसार की वस्तुओं में खुशी सुख है ऐसा अभिप्राय मान्यता मात्र है। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किस जगह पर फिल्माया गया है।

वाकई दुनिया फानी है और कुछ ही पलों का साथ रहता है सबका। हमारा आपका साथ भी अब शायद कुछ ही पलों का है, और अगले गीत का शायद हम आपको थोड़ा सा हिस्सा ही सुनवा सके। जवाब बिल्कुल सही भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। द बर्निंग ट्रेन फिल्म में गाना ट्रेन में फिल्माया गया जितेंद्र नीतू सिंह आशा सचदेव पर, बिल्कुल सही जवाब। और एक याद ताज़ा की है प्रेम की। 8वीं कक्षा में पढ़ते अधकचरे प्रेम की याद बहुत बात समझ पाए। मैं कक्षा में आगे बैठता तो एक 14 साल की लड़की बार बार हमसे मदद मांगती, ये सवाल बताओ, ये ट्रांसलेशन बताओ। मेरी आधी कुर्सी पर बैठ जाती, मैं उसकी कॉपी पर जवाब लिखकर डांट देता था। बाद में एक एक्सीडेंट में घायल वो बहुत दिनों की पीड़ा के बाद गुजर गई। उसकी सहेली ने बताया था वो तुमसे प्यार करने लगी थी। उफ उफ उफ, ये जो जानकारी बाद में होती है ये सच में दिल तोड़ देती है। एक और श्रोता ने अपनी 1990 में हुई शादी की जो पोस्टकार्ड साइज के 100 फोटो याद के लिए अभी भी सुरक्षित रखे हैं, क्या बात है। ऐसी यादें तो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और बड़े दिनों तक गुदगुदाती रहती हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि वर्तमान के महत्व के सुंदर भावों में व्यक्त करती है आज की इबारत। स्मृति कभी खुशियां देती है तो कभी बिछड़ने और टूटने का दर्द याद दिलाती है। मन अक्सर यादों की गलियों में भटक जाता है, लेकिन जीवन हमें यह संदेश देता है कि बीते कल में खोने के बजाय आज को संभालना जरूरी है। समय की कभी रुकता नहीं, इसलिए वर्तमान का हाथ थाम कर जीवन को जीना ही आज का सबसे बड़ा सच है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। वैसे समय में कल आज और आज कल में बदल जाएगा, और जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जो समय तेरा था वो तेरा होके तेरा ना रह जाएगा। बहुत गहरी बात कही आपने। इसी बात पर ये गीत सुनिए और बताइए कि आवाजें किन की हैं। साथ ही चलते चलते फिल्म का नाम भी बता दीजिए।

पर हम पुकार ही रहे थे कि जवाब आ गया। फिल्म परिणय का गाना है ये, आवाजें मन्ना डे और वाणी जयराम की हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समय हो रहा है खत्म। तो सुरीला सफर के इस सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

श्रोताओ नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी परिवार पर। परिवार मानव जीवन की पहली पाठशाला होती है। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि प्रेम, संस्कार, सुरक्षा और अपनापन का सुंदर संगम होता है। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता से हमें अनुशासन, त्याग और मेहनत का पाठ मिलता है, तो वहीं दादा दादी, नाना नानी हमें अपने अनुभवों से सही मार्ग दिखाते हैं। परिवार के बीच रहकर व्यक्ति सहयोग, सहनशीलता, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण सीखते हैं। हर परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो माला के धागे की तरह पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। फिर वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन, दादा दादी या माता पिता होते हैं। उस धागे की मजबूती पर पूरे परिवार की एकता टिकी होती है, जिनके बदौलत पूरा परिवार एकजुट, एक साथ होता है।

आज के आधुनिक युग में भले ही लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हों, लेकिन मानसिक शांति और सच्चा सुख केवल परिवार से ही मिलता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, उस वक्त हमारा परिवार एकजुट होकर हमारा सहारा बन जाता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें परिवार का साथ मिलता है। एक अच्छा परिवार समाज की नींव होता है। यदि परिवार में एकता होगी तो ये परिवार समाज में अच्छा उदाहरण बन जाता है। परिवार की वजह से बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है, जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। कुछ खास अवसर पर जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, गीत संगीत की महफिल जमती है, तब वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते।

ए संजू, ए बिट्टू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

परिवार जीवन का वो अनमोल खजाना है जिसकी कीमत धन दौलत से नहीं आकी जा सकती। ये वो छाया है जहां मनुष्य हर पीड़ा को भूल जाता है। ये वो आश्रय है जहां आंसू भी मुस्कान बन जाते हैं। पर आजकल तकनीक ने लोगों को पास लाकर भी मन से दूर कर दिया है। मोबाइल फोन की चमक से रिश्तों की मिठास कहीं कम होती नजर आ रही है। इसलिए आवश्यक है कि कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने परिवार के साथ हमें वक्त जरूर बिताना चाहिए। और उस वक्त जब हमारे अपने हो तो मोबाइल फोन को थोड़े समय के लिए दूर रख देना चाहिए। मुश्किल होती है ना, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि परिवार ही जीवन का आधार है, समाज की आत्मा है। आपके परिवार में हमेशा प्रेम और रिश्तों की मिठास बनी रहे और घर स्नेह की रोशनी से हमेशा जगमगाता रहे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले

0: 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
3: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
4: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आपने ट्यून किया है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये मीठा सा गीत हलाकू फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानिया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

मोहब्बत की ये खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

0: दिल लेकर मीठा से गम का ये तोहफा देने वाला गीत आपने सुना फागुन फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में कमर जलाल आबादी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं नई दिल्ली फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज है, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर।

आइए सदाबहार नगमे का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी की धुन। फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

जीवन की वीणा पर बसता रहे यूं ही मीठा मीठा प्राणों का राग और जीवन में छाई रहे बहार, इसी संदेश के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं।

0: सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
1: मंजरी वर्मा। तो पर आखिर इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली
0: बस
1: है।
0: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
1: बिल्कुल। तो
0: नमस्कार
1: भाई
0: मंजरी का
1: हाँ
0: भी।
1: हाँ आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और साथ में हमारी जो सखिया में सखा भाई सुन रहे हैं उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग
0: मुद्दत
1: मिले,
0: हो गई।
1: मुद्दत हो गई, जमाने गुजर गए, आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था। और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देख कर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी। तो
0: मुझे
1: भाई
0: भी बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी
0: तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या-क्या खास बातें हैं?
1: भी खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए
0: क्या बात
1: हैं,
0: है?
1: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट
0: हाय
1: और
0: हाय,
1: छेना दही बड़ा।
0: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर
1: पहले
0: दिया।
1: ही कर दिया। और मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी, आपने बोला था, मुझे याद है। तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजुल जी कोई चीज मुझे एक दे देंगी तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएंगी पिलाने खिलाने की। तो चलिए ये तो हो गई बातें हमारे व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय
0: ये
1: है,
0: तो बहुत ज्वलंत
1: ज्वलंत
0: समस्या
1: समस्या
0: है,
1: है
0: क्योंकि ये तनाव
1: जी।
0: तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ मोबाइल में ही सब लगे
1: लगे
0: हुए
1: रहते
0: हैं।
1: हैं
0: हाँ,
1: जी।
0: और
1: तो
0: आज एक खास दिन भी है।
1: जी
0: खास एक क्यों, दो दो खास
1: दो
0: दिन
1: खास
0: है।
1: दिन हैं,
0: हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
1: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और कथा सुधा लेकर हम आए हैं। तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
0: बड़ी मजेदार कहानी है।
1: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे, तो
0: हाँ
1: बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। लेकिन उससे पहले राजुल जी क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
0: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही हैं तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी, कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना
1: जी
0: हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत, तेरे मेरे सपने फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और
1: बहुत ही
0: भाई सुनने, शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी।
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की,
1: साथ
0: जुदा ना
1: रहने की,
0: होने की,
1: बिल्कुल
0: और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल। तो कथा सुधा जो हम आज सुनाएंगे तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम।

0: हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
2: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया, मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
3: देहात की बकरी है, यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
2: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक काछी एक तरफ से आ निकला,
4: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता हूं।
2: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
4: चलिए मैं रख देता हूं।
2: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली, उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
2: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रें चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक ना था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटगिरीदार मेमे का निरंतर स्वर आ आकर कान के पर्दे को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं, बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज, 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा।

होगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी, उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती। और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांध कर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी, एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेटकर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। ला हौल विला कुव्वत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐठन उसे छुड़ाया। 1 घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुर जाते थे और जी जल रहा था वो अलग। ये तरकीब और भी तकलीफ दे साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदि है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी, जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा।
मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं।

0: कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं। सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हाँ, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
1: कौन कौन है, कौन है रे, रे कहां से पत्तियां तोड़े लाता है, कौन है?
0: मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया, मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
2: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए?
3: जीना मुहाल किए देती है ये, घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
0: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकालकर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
2: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
0: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले, कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
1: हुजूर 8 आने बकरी मिलते हैं।
0: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
1: मर कही है क्या बाबूजी?
0: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
1: अभी तो दूध देती है।
0: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
1: दूध आपके

0: घर पहुंच जाया करेगा बाबूजी।
1: तुम्हारी मेहरबानी।
0: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
1: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रख कर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। एक हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी। यहां तक कि एक महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया। काछी के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दुहलाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में एक बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती, तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी दो बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी, और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
2: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
1: हाँ, बहुत खूबसूरत।
2: ये चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
1: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
2: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
1: चोकर खत्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
0: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
1: देवी जी ने कहा,
2: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
1: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रिकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गड़रिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजिन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है। ना वतन में रहते हैं, ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन, समय और दादाजी, पिताजी, काका जी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
5: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए हम
1: फिर से
0: बड़
1: स्वागत है।
0: जी और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है।
0: जी, और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है
0: जी
1: एचआईवी, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा
0: जी
1: से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है और समय समय पर एचआईवी की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही एचआईवी एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले इस बात की कोशिश करता है, और
0: बिल्कुल
1: स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके एचआईवी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी
0: संदेश
1: बल
0: है
1: देता है।
0: जी। और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा, स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं, तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में वो बहुत सारी जानकारियां।
0: हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कई संग्रहालयों में, उस समय के वस्त्र, पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी के या किमखाप कैसा चलता था, मलमल कैसा होता था, तो ये सब देखने को मिलता है। बड़ा अच्छा लगता है,
1: बहुत अच्छा लगता है। वजनदार चीजें जो दिखती हैं, ढाल, तलवार, ये सब कितनी वजन वाली, कैसे वो लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको संरक्षित करने के उपाय करें, और जागरूक भी रहें, और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो है वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो, देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं

0: वो तो चलिए सुरक्षित है, फिर भी हम उस शीशे पर बार
1: छूते
0: बार
1: हैं।
0: हाथ
1: हाँ,
0: लगाते
1: वो
0: हैं।
1: सब नहीं करना चाहिए।
0: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
1: रिंग सी
0: रगर
1: लगा
0: रह
1: रहती है,
0: रहती है,
1: डोरी
0: हाँ
1: लगी रहेगी
0: डोरी
1: हर।
0: लगी, जिससे कि बाधक बाधा रहे ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब
1: अच्छा
0: पुराने
1: नहीं
0: बहुत
1: लगता
0: समय
1: है
0: से संजो कर रखा गया है,
1: जी।
0: इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
1: पहुंचाएं, सही बात है। और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं। और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी, उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स में,
0: कई
1: तो बड़ा अच्छा
0: संग्रहालयों में
1: लगता है
0: शोज भी होते हैं,
1: जी।
0: कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा
1: बिल्कुल,
0: उस
1: करीब
0: वक्त के
1: पहुंच
0: बारे में।
1: जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो
0: और
1: चलिए
0: हम करीब पहुंच रहे हैं
1: गीत के।
0: गीत के।

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं पहले। स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ,
1: चलिए
0: उसमें
1: चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं।
1: हाँ ठीक है।
0: बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देसी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक, और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मिर्ची, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें और इसमें सारे

0: जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी, थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि ये खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन,
1: अरे
0: सेब,
1: वाह,
0: पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं। और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये
1: तो
0: हमारी
1: हमारे
0: चाट।
1: एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि
0: बिल्कुल।
1: जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है,
0: तो बस आप
1: तो ये
0: बताइए,
1: मिठाई है नमकीन,
0: ये आप पढ़ेंगे
1: पर
0: सामग्री
1: अभी पता लग
0: बताएंगी।
1: जाएगा। तो
0: जी
1: भाई छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताज़ा छेना या पनीर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, 2 कप ताज़ा दही हो, उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज़्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो
0: जी
1: वो फट जाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली, चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं,
0: क्या बात
1: चाहे
0: है।
1: तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और खास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की ये बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपने बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच
0: तो
1: में
0: मोबाइल शरारते कर रहा है।
1: शरारते कर देता है। तो
0: हाँ
1: बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं। तो वो एक आपसी तनाव होता है,
0: झुंझलाहट होती है।
1: झुंझलाहट होती है कि अरे यार खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं। तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने के समय
0: हाँ
1: मोबाइल
0: बिल्कुल
1: चलाइए।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है,
1: बिल्कुल
0: यानी दाल भात में मूसर्जन।
1: मूसर्जन। और एक साथी लिखती है कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है। वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है।
0: सही
1: साथ
0: बात
1: रहने
0: है।
1: वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है, उन्होंने कहा है। जी
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी। अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना, फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत
1: क्या
0: अच्छी बात कही इन्होंने।
1: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहां तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती हैं। इसे हम नजरअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण घर के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़ कर रखता था,
0: एक डोर में बांधे रहता
1: बांधे रहता था। बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिखी।
0: था।
1: लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहां डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे,
0: हाँ
1: पूरे टाइम
0: लेकिन
1: नहीं लगा रहेगा अपने
0: ये
1: साथ।
0: समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही हैं और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन ले एक।
1: गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए, तो मोबाइल में की
1: तालमेल
0: भूमिका को
1: कैसे
0: जरा हाँ थोड़ा कम
1: जी
0: किया जाए तो जीत लिया जाए दिल।
1: बिल्कुल
0: एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आशर की क्या बात है। हाँ ये बात तो
1: नहीं
0: होती है ना कि अब सोते
1: बिल्कुल
0: समय भी कोई ये देख रहा है, तो
1: देख रहा
0: जबकि
1: है।
0: सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूर बरतना
1: मुझे
0: दूरी
1: लगता है
0: बरतना
1: कि
0: अच्छा
1: राजू
0: रहता
1: जी,
0: है।
1: हाँ बेड से आप दूर ही रखिए मोबाइल, मेज पर रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहू और बेटों की तू तू मैं कभी ना कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा की मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे जरूरी है कि आप मोबाइल को दूरी रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफी चीजों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं, आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है,
1: बिल्कुल
0: और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है,
1: और
0: लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूँगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो, पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते हैं, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊँगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज़ छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
0: जी।
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
0: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, और ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं, और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है। तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीज़ें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीज़ें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
0: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है, इस ये बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हम कॉम्बिनेशन में, जैसे मैंने बताया, दो चीज़ें साथ में ले ले तो ये कम्प्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
0: अच्छा,
1: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं, या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कम्प्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्या दोनों साथ में आए हैं। तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने ज़माने से,

0: वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है, और हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेज, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा
0: तो पहला अगर मैं देखूँ तो दूध और दूध के पदार्थ है, यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है। दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है। और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य हैं, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊँ तो वो उतने ही अच्छे हैं जितना मेरा दूध अच्छा है।
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल।
1: जी,
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे। जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है। ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं। भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है।
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते।

0: है, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीजें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदे मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
1: अच्छा
0: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज़ घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
1: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
0: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
1: अच्छा
0: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज़ है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है कई बार, ये मिथ है या सच है कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
0: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
1: वो कौन सी हैं?
0: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
1: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
0: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज़ परहेज नहीं करनी है,
1: प्रोटीन ले सकते हैं?
0: बिल्कुल ले सकते हैं, और ज़रूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना ज़रूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा।
1: जी जी
0: उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं
1: एक
0: कि
1: मिथ होता है,
0: बीज
1: बैंगन
0: वाले,
1: बंद कर दीजिए,
0: हाँ बीज
1: टमाटर
0: वाली
1: बंद कर
0: चीज़ें,
1: दीजिए।
0: बीज वाली चीज़ें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे, फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें

0: बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
1: जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
0: ये वादा रहा इस मूवी से, ये वादा रहा
1: टाइटल
0: टाइटल
1: सॉन्ग
0: सॉन्ग।
1: सुनना है आपको।
0: जी बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
0: राइट।
1: हम सुनवा रहे हैं

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो,
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि
0: पचा
1: इतना
0: नहीं
1: सारा
0: पाएगा।
1: पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो वो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज़्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो
0: ओ
1: जाएगा।
0: हो, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो शक पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज़्यादा आसानी से यूज़ कर पाएगा, शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज़ करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीज़ें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीज़ों की एक साथ ज़रूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी। तो इसका मतलब ये है प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज़ ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहाँ पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की ज़रूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह

0: तो हम टाइट खा लें, और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें, और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
1: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कुछ कम करना चाहो रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना।
0: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में है, इसका डिटेल बताइए आप।
1: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
0: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है, तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
1: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व्ड है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है, तो
0: जी
1: जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है, कि जितना वो प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है,
0: जी
1: अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेज जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है।
0: सीरम क्रिएटिनिन।
1: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
0: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार हैं कि हम खाना ज़्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है।
0: जैसे
1: जैसे
0: दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
1: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से, आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
0: जी, भाई बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
1: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
0: जब किसी को किसी से प्यार
1: प्यार
0: हो
1: हो जाए।
0: जाए, बहुत ही
1: यस।
0: अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व, और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं।
1: जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए ज़रूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन्स के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है, लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी ज़रूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो

0: दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है, लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए। जब
1: या धूप
0: अच्छी
1: में
0: धूप हो,
1: निकलें।
0: अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं, तो हम बहुत इंटेंसिव वॉक में रहते हैं पैटर्न में। एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करें, ये ज़रूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट ज़रूरी है।
1: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या-क्या हैं?
0: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफ़ी सारे खाने की चीज़ें ऐसी है,
1: जैसे
0: जैसे फल हो गए, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। ठीक है, आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही ज़रूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक चीज़ कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो, अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है, क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीज़न है प्रोटीन खाने का, वो रीज़न नहीं हो पाता है कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पोर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता
1: जैसे
0: है।
1: ऑरेंज है।
0: जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है। मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियाँ लूँ तो जितनी कलरफुल सब्जियाँ ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज़्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज़्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज़्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये ना पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सब सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो ज़रूरी, बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे, उतने अलग अलग विटामिन्स आप इंश्योर
1: ग्रहण
0: कर
1: कर
0: रहे
1: रहे
0: हो।
1: हैं। बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल
1: फिल्म
0: मूवी से।
1: से हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन्स है जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आँखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या
1: जिस
0: धुंधलापन।
1: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोलबल सोर्सेस है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है, जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी।
1: दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोलबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है,
0: इसका
1: और
0: क्या काम होता है?
1: ये ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत, और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीज़न है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे।
0: जी।
1: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज़्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है,
0: जी।
1: ये मेजर सोर्सेस है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं बट ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है।
0: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
1: जी, और जब

0: हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है।
1: जी
0: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीज़ों में रहती है, जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है, क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है। तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
1: नींबू
0: हैं,
1: है,
0: नींबू, मौसम्बी, पेरू, जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स, जो सींग होती है, उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज़ देखी जाए तो मिर्ची,
1: ओहो,
0: मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी
1: हरी
0: होता है,
1: मिर्च।
0: हरी मिर्च में। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
1: जी। और देखिए, आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
0: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या नो दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
1: अच्छा,
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे मैंने बताया, वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे हैं या हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीज़न से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं। वो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं, या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज़, नट्स हो गया, जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए। हर चीज़ रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स, हर सब्जी रोटेशन पे रखो। जितना आप उसे अलग अलग चीज़ें खाएंगे अलग अलग समय पे, उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
0: इश्क बुलावा, हंसी तो फंसी, पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज़ की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज। तो आप चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो। ठीक है, कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है।
0: कठोर।
1: तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तीसरा है आपकी सब्जियाँ,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती
0: क्या
1: है।
0: बात है।
1: तो सब्जियाँ होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, पर ये ज़रूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीज़ें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ। और इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है पानी, जिसे हम ज़्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज़्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीज़ें, पांचों चीज़ें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न ज़माना है, पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज का ज़माना है, तो वो पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज़ के पीछे।
0: कितनी हमें आवश्यकता है।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही है तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतने ही खाएंगे। तो ये हमें ज़्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज़्यादा ज़रूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ़ है, डायबिटीज़, उनके लिए ये चीज़ बहुत काम करती है। उनके लिए भी ये चीज़ बहुत काम की है जिनको वज़न कम करना है,
0: जी
1: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत ज़रूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी ज़रूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी भी

0: क्या पेट भर लोगे, तो
1: अच्छा
0: कुछ नहीं खाओगे। और प्लस वो एक टू एक्सटेंड, एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है। तो जो एसिड्स है स्टमक के, वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीज़ें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजोल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज़्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए। तो वो
1: अच्छा
0: पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाड करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने।

0: में परिभाषित किया और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं, वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
1: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं हैं। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की ज़रूरत है, पर अगर आप ठीक हो
0: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है।
1: तो मिलना ज़रूरी है, एक बार मिलना ज़रूरी है। आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफ़ी बार हम चीज़ें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फ़ायदा कर रहा है, या ये चीज़ें हम अवॉइड कर दे रहे। जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
0: या
1: उसमें
0: फिर वो बिना मलाई का दूध है।
1: अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज़ के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप वो समझ लें फिर आप खुद से चीज़ें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना ज़रूरी है क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है। वो इंटरनेट से पढ़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज़ का नॉलेज है, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है।
0: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
1: बिल्कुल नहीं,
0: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती है।
1: उनकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीज़ें चेंज हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका। हर एक इंसान अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग है, वो एक चीज़ पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीज़ें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज़ खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज़ खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज़ दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें क्योंकि हर फल का अपना इंपॉर्टेंस होता
0: जैसे
1: है।
0: गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
1: आम गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डायटिशियन की सलाह लगेगी ही,
0: जी।
1: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीजन है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीज़न छोड़ के अगर ठंडी की सीज़न में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज़ करूँगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में, जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज़ तो कम से कम रखनी है। एक से ज़्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी ज़रूरत पूरी होगी, तब तक हमारी ज़रूरत नहीं पूरी होने वाली है।
0: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की ज़रूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीज़ें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले, ये भी ज़रूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है।

0: यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से लें, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज़्यादा ना हो, बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीज़ें, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें चाहिए, वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहें, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती, वो सिर्फ एहसास से बयां हो तो बहुत खूबसूरत बन जाती है। जिंदगी को संवारती है मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बतों की इतनी कहानियां हैं दुनिया में जितने आसमान में तारे। ऐसी मोहब्बतों का रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है और मंजिल किसी छाया की तरह दूर सरकती चली जाती है।

रास्तों के ऊबड़ खाबड़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन रास्तों से हट जाएं। एक तरफा मोहब्बत में पड़ने वाले ही जानते हैं कितनी खरोचों और कितने जख्मों से भरा होता है मोहब्बत का रास्ता। संग दिल दुनिया सवाल उठाती है, तंज करती है, रास्ते में मुश्किलें खड़ी करती है, पर लोग हटते नहीं अपने रास्तों से। वो तो बस तमाम उदासियों और तमाम मासूमों के बावजूद बढ़ते चले जाते हैं। उनकी मुस्कानों के पीछे होती हैं तरह तरह की रुसवाइयां।

जब निगाह में तुम ही थे, जब दुनिया में हमारे लिए सिर्फ तुम ही थे, जब हमने तुम्हारे सिवा और तुम्हारे पार कुछ सोचा ही नहीं, तो अब भी नहीं सोचेंगे। आज भले निगाहों में धुंध छाई हो और सूझता न हो कुछ, पर हमारी दुनिया तो तुमसे ही रोशन रही है, आगे भी रहेगी रोशन। कैसे मिटाया जा सकता है दिल पर लिखा तुम्हारा सुनहरा नाम।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी आए।

0: यूं भी होता है कि अनायास जुबां पर तुम्हारा नाम आ जाता है, यूं भी होता है कि कोई भूली बिसरी याद तैर आती है मन के आसमान पर। अचानक ही आई तुम्हारी ये याद किसी जुगनू की चमक जैसी होती है। हमने कहा ना कि दिल पर लिखा तुम्हारा नाम मिटाया नहीं जा सकता, दिल तो बस तुम्हें पुकारता है हर पल हर घड़ी।
1: आ जा रे।

रात के पल बीत जाते हैं जल्दी। कहते हैं कि खुशियां तेजी से चली जाती हैं, एक तरफा इश्क की राहों पर बहार आती ही नहीं, आए भी तो थोड़ी देर को आती है और फिर चली जाती है। ऐसा ही था वो दौर जब अचानक खिलने लगे थे फूल, जब अचानक गुनगुनाने लगा था वो, और जब अचानक सब कुछ खुशनुमा सा हो गया था। यूं जैसे बहार आई और बस ठहर गई, पर हर बहार को एक दिन बीत जाना होता है।

आसमान पर चमक रहे हैं तारे। तारों की झिलमिल रोशनी अच्छी लगती है, लेकिन ये तारे मिलकर अचानक बनाते हैं एक चेहरा। आसमान पर चमकता वो चेहरा दिल में बेचैनियां पैदा करता है और फिर कुछ नहीं सोचता। ऐसे खामोश, ऐसे उदास दौर में दिल कुछ कहना चाहता है तुमसे, पर कहता नहीं है। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, वो बिना कहे बस पहुंचा दी जाती हैं तुम तक।

0: गले लगा।
1: फिल्म की नाम
2: मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता।
1: जाऊं कहां बताए दिल।

हमराही। आज का चाहे गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
0: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अगली पेशकश श्रेया घोषाल की अभी आपने सुनी। अब सुनिए यारा दिलदारा। इस फिल्म में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति को धुन बनाई है जतिन ललित ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: ये था आज का तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी 6:35 पर भजनों पर आधारित कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा। 6:45 पर आप इसका पुनः प्रसारण सुनते और आज होगा इसका 7वां भाग और कल हम इसका 8वां भाग प्रसारित करेंगे। प्रस्तुति होगी मनीषा जैन की। इसका प्रसारण समय होता है सुबह और शाम 6:45 पर। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग प्रसारित किया जाएगा। रात 8 हवा महल में उर्मिला मिश्रा की लिखी झलकी सुनवाई जाएगी, ये भी खूब रही। निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का। नए फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे चित्रलोक कार्यक्रम में रात 8:15 पर। इसे आप नियमित रूप से सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। रात 10 छाया गीत सुनेगा, आलेख एवं स्वर जयंत पात्रिकर का। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 रंग तरंग। ये थे आज के शेष कार्यक्रम, अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 5 आप सुनेंगे कार्यक्रम जागो सुबह हो गई, 6:05 पर लेकर आएंगे।

छप्पन धन्यवाद। पुराने फिल्मी गाने आप सुनते हैं भोले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे। हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप नियमित सुनते हैं सुबह 7:30 पर। त्रिवेणी का प्रसारण समय रहता है सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे। आज के फनकार, कल ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। समय सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सेहतनामा के अंतर्गत डॉक्टर मीनल शाह से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत सुनवाई जाएगी, प्रोटीन और विटामिन का महत्व। 11 बजे लेकर आएंगे कार्यक्रम रंग तरंग। यादों की महफिल सजेगी दिन में 12:05 पर। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं दोपहर 1 बजे। सदाबहार नगमे लेकर आएंगे दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी 3 बजे। कल के विषय हैं अपराध बोध से बचना जरूरी, मुहावरों की दुनिया आंखों का तारा होना, उद्यमी महिला कल्पना सरोज और साथी परीक्षा परिणाम पर, कभी बड़ी मार तो कभी मिले उपहार। शाम 4 बजे पिटारा में सेल्युलॉइड के सितारे के अंतर्गत पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत सुनवाई जाएगी। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस सुनिएगा शाम 7:45 पर। रात 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे ब्रजभूषण के लिखे नाटिका प्रेम दीवाना। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी ममता सिंह। रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात। अभी आप हमारे आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे।

अभी आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा गीत सुना। आवाज लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम।

अभी आपने पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ को फिल्म अंकुश में सुना। संगीत तैयार किया था कुलदीप सिंह ने, बोल लिखे थे अभिलाष ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम संध्या रंजन यही समाप्त होता है।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

0: श्रोताओ, भागम भाग के इस जीवन में संगीत हमारे मन को शांति प्रदान करता है। संगीत में अगर भक्ति की धारा हो तो वो संगीत हमें एक अलौकिक संसार में ले जाता है। भक्ति संगीत पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन, इसकी सातवीं कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनूप जलोटा जी, एक बार फिर से आपका हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार सर।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: स्वागत कर रहे हैं तबले पर आशीष झा जी का और हारमोनियम पर अजय जोगलेकर जी का। अनूप जी, आपने अपने भजनों में बहुत सारे राग रागिनियों का प्रयोग किया है, यूं कहें कि घुमावदार सुरों का प्रयोग किया है अपने गायन में। गमक, मीड, खटका, मुरकी, ये सब कुछ देखने को मिलता है। उसके बावजूद एक आम श्रोता बड़े ध्यान से, तन्मयता से सुन सकता है, समझ लेता है। तो ये जो बारीकी के साथ आप खेल करते हैं, उसके बारे में हमें विस्तृत बताइए।
1: सच तो ये है कि किसी भी गायकी के अंग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती, लेकिन जब वो साधना हो जाए, जब वो सध जाए, तो उसको कुछ इस तरह गाना चाहिए कि लोगों को आसान लगे, लोगों को मुश्किल नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब वो गाने की कोशिश करें तो उनको मुश्किल लगे, सुनने में उन्हें आसान लगे, लेकिन जब कोशिश करें तो उनको लगे नहीं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये निकलेगा गले से। तो हमने वही कोशिश की है कि छोटी छोटी मुर्कियाँ, छोटी छोटी ताने, उसको ऐसे सहज ढंग से हम ले लेते हैं कि सामने वाले को लगता है तो आसान होगा
0: जी,
1: लेकिन जब उसको करने की कोशिश की जाएगी तो पता लगेगा कि आसान नहीं है, इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारे गुरु ने इस तरह सिखाया हमको। अब जैसे एक भजन है रंग दे चुनरिया
0: जी,
1: मैंने बहुत साल पहले ये भजन आनंद कुमार जी से सुना था, बहुत अच्छे गायक है वो। तो मैंने फिर उसको अपने ढंग से, उस भजन को थोड़ा सा और बढ़ाया, अपने ढंग से गाता हूँ। तो सुनने में वो भजन बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब गाने लगो तो लगता है कि आसान नहीं है, इसके अंदर जो काम है
0: जी
1: उसके लिए बरसों लग जाएंगे।

0: वाह, बहुत सुंदर, एकदम मंत्रमुग्ध होकर हम सुन रहे थे। यहाँ पर एक सवाल जहन में आया है, वो ये कि शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का जैसे भेद यहाँ पर मिट जाता है, आप शास्त्रीय संगीत के साथ साथ किस तरह से सुगम संगीत तैयार करते हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा और सबसे पहले शास्त्रीय संगीत ही गाना शुरू किया मंच पे। फिर मुझे लगा कि यदि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं तो माध्यम इसी शास्त्रीय को सुगम करना होगा, और वही मैंने किया, उसी को सुगम किया है। है ये शास्त्रीय है, लेकिन इसको एक सुगमता दी है, और उस माध्यम से ये ऐसे लोगों तक पहुंच गया जो शास्त्रीय नहीं सुनते थे, और उनकी रुचि शास्त्रीय संगीत की ओर बढ़ गई। ये मैंने कोशिश की।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अनूप जी, फिर से वही वक्त आ गया है जो हमें नहीं पसंद है अनुमति लेने का वक्त आ गया है, तो आज की इस कड़ी से श्रोताओं से अनुमति लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। कल अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तो हमारे श्रोताओं को सुनते रहना है ये श्रृंखला संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है
1: संध्याकाळचे 7 तथा प्रादेशिक बातम्या।
2: ताई नोकरी मिळाली।
3: अरे वा अभिनंदन। आता भरपूर शॉपिंग।
2: हो ताई नवीन मोबाईल जीन्स जॅकेट।
3: थांबा राजपुत्र पगारा आधीच खर्च।
2: इंस्टंट कर्ज हे मिळतं ना।
3: आधी बजेट बनवायला शिक मग खर्च कर।
2: पण ताई
3: हे बघ कमाईचा एक भाग नेहमी वाचवायला हवा। पण पार्टी देण्यापासून वाचणार नाहीस तू।
2: हो ताई पार्टी माझी बजेट तुझं।
4: आरबीआय म्हणते
5: आर्थिक वागणं योग्य असेल तर ते तुम्हाला वाचवेल।
6: चेत

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश सनी और शंकर महादेवन की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है शंकर शान लॉय का, फिल्म पंगा।

अभी आपने शंकर ईशान लॉय के संगीत निर्देशन में पंगा फिल्म का गीत सुना। शंकर ईशान लॉय के संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए, आवाजें जावेद अली और हमसिका अय्यर की। फिल्म का नाम है इट्स माय लाइफ।

चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। लीजिए सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल को। संगीत तैयार किया है विक्की प्रसाद ने, बोल गरिमा बहाल के। फिल्म का नाम टॉयलेट एक प्रेम कथा।

अब सुनिए पलाश मुच्छल के संगीत निर्देशन में पलक मुच्छल का गाया और साथ में इस गीत को गा रहे हैं पलाश भी और साथ में आतिफ असलम भी। बोल हैं पलक मुच्छल की फिल्म का नाम स्वीटी वेड्स एनआरआई।

मोहित चौहान के गाए इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत

0: भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत

0: भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
1: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था

0: कभी संतुष्ट ना हो। और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच, और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद

0: बाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म घर में सुना। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन। अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम इज्जत।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गीत आशा भोसले और सुरेश वाडकर का गाया हुआ फिल्म है परिंदा। खुर्शीद के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: विविध भारती,
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया, और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: अब सुनिए एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज आशा भोसले की, फिल्म का नाम ज्वेल थीफ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

सन 1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका

1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

0: चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।
1: अरे यार

1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी, जिंदगी जिंदगी, रिवाज, बुनियाद, हीरा, बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म में पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

मीरा जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, ढाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम। फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया, जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें

है कभी खुशी कभी गम। फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की। साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आईं। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

फरीदा जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

0: ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

ये दिल जो गमगीन हुआ था और ये नजरें भी जो खफा हो गईं, चलो भूल जाते हैं वो बातें कल की और करें एक शुरुआत नई।

कैसे बताएं कि जो मोहब्बत खिली है हमारे बीच वो कितनी है। चमचमा रहे हैं जो आसमान में, गिन लो उन्हें, ये तो बस उन सितारों जितनी है।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

बोल दिए हैं अनकहे बोल, बजने लगी है मोहब्बत की सरगम, कैसा इत्तेफाक है, सज रही है उम्मीद की वादियां और बस गई हैं अरमानों की बस्तियां, ये कैसा इत्तेफाक है।

छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ। अब इजाजत दीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।